0: सोचिए महीने के आखिर में जेब खाली हो और अचानक से कहीं से कुछ पैसे मिल जाए, तब जो खुशी होती है उसका तो ठिकाना ही नहीं रहता। शुक्रवार को भारतीय बैडमिंटन फैंस को ऐसी ही खुशी का, हर्षोल्लास का एहसास हुआ। बुधवार और गुरुवार पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन जैसे प्रबल दावेदारों को हारता देख मानो मायूसी का अंधेरा छा गया था, लेकिन फिर रोशनी की ऐसी खिड़की खुली जिसकी कल्पना बैडमिंटन के प्रकांड पंडितों ने भी नहीं की थी। जी हाँ, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2026 में भारत का एक पदक सुनिश्चित हो चुका है। ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने ये पदक वुमेन्स डबल्स में हासिल किया है, एक ऐसी कैटेगरी जहां इससे पहले पदक 2011 में यानी 15 साल पहले ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पुनप्पा की जोड़ी ने भारत को दिलाया था। ट्रीसा ने कहा,
1: Finally this happened and obviously really happy that we converted this win into this semi-finals and getting a medal, but it's not stopping it. There is matches are coming tomorrow also. Obviously I want to thank the crowd people. I think the crowd was amazing today. That was really giving that positive vibes to us.
0: इस पदक की महक सूखे के बाद पड़ने वाली पहली बारिश जैसी इसलिए भी है क्योंकि ट्रीसा और गायत्री का ये साल मुश्किलों में कटा है। अप्रैल में ट्रेनिंग के दौरान ट्रीसा के टखने में लगी चोट के चलते ये जोड़ी ना ही एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप खेल पाई और ना ही प्रतिष्ठित ऊबर कप में हिस्सा ले पाई।
1: बिफोर एशियन चैंपियनशिप आई गॉट इंजर्ड 3 डेज बिफोर, दैट वाज काइंड ऑफ ऑब्वियसली इट्स बीन सैड एंड इमोशनल एंड काइंड ऑफ मिसिंग दोस मेजर टूर्नामेंट्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया and all those moments I missed. I think those times there is so much of ups and downs that these many years that we all went through. Now it's we are in a great shape and we just want to continue that.
0: यहाँ भी क्वार्टर फाइनल में चुनौती कड़ी थी, सामने चीन की मजबूत

0: दूत जोड़ी थी जिसका एक हिस्सा थी प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी जांग शू शियान और दूसरी थी पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाली जिया यी फान। और शुरुआत भी ऐसी हुई, जब तक ट्रीसा और गायत्री अपने रंग में आती तब तक स्कोर 9-2 का हो चुका था, लेकिन फिर भारतीय जोड़ी ने 6 पॉइंट लगातार लिए। इसके बावजूद वो पहला सेट 21-16 से हारी। गायत्री बताती हैं,
1: फर्स्ट गेम के बाद थोड़ा टैक्टिक्स चेंज किया हमने, स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिकी था पर आई थिंक थोड़ा काम रह के हमने निकाल लिया। वी डोंट वांट टू रिवील टू मच ऑफ द स्ट्रेटजी बट वी वर जस्ट रोटेटिंग, वी जस्ट वांटेड आवर लेग्स टू मूव।
0: पर कोर्ट साइड पर बैठे मेंटोर और गायत्री के पिता पुलेला गोपीचंद और कोच बी सुमित रेड्डी ने सिर्फ एक ही मूल मंत्र दिया, स्टे काम।
1: He always said like just calm down and just be in the present moment. I think that really worked today. That's the kind of advice he gave behind us.
0: दूसरे सेट में कांटे की टक्कर हुई, स्कोर 15-14 तक पहुंचा और उसके बाद गायत्री और ट्रीसा ने मानो टॉप गियर डाला, 6 पॉइंट लगातार जीतते हुए 21-15 से वो सेट अपने नाम कर लिया।
1: The crowd was so amazing. The crowd that gave us that confidence even we lost the first game also. They were in full josh that come on girls, you can do this. And I think that really helped us.
0: तीसरे सेट में चीनी जोड़ी ने एक बार फिर अच्छी शुरुआत की, भारतीय जोड़ी 1-4 से पीछे थी और फिर 8 पॉइंट लगातार ट्रीसा और गायत्री ने लिए और अंततः इस मुकाबले को 21-13 से जीता। इस जीत पर कोच सुमित रेड्डी ने कहा,
2: मैच आज का तो बहुत अच्छा गया है, जैसा लड़कियां ने खेला हम तो बहुत ही खुश है एंड उसके साथ मेडल आ गया, आई थिंक वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दोनों बहुत ही बेहतर खेले, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग खेले, इतने हजारे लोगों के बीच में खेलना मजाक की बात नहीं है, तो आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंस खेले।
0: इस जीत के बाद सेमीफाइनल का टिकट कन्फर्म हो गया है, यानी ब्रॉन्ज मेडल आना सुनिश्चित है, लेकिन उससे मन कहाँ भरने वाला है तो सबके मन में एक ही सवाल है,
3: गोल्ड आएगा?
2: वो कल देखेंगे, कल का हम अभी ओपोनेंट्स का भी मैच देखना है, देख के हम ऑब्वियसली बोलेंगे हमारा प्लेयर्स को कि मोस्टली ओपोनेंट्स क्या करने वाले हैं एंड आई थिंक गोपी सर ऑलरेडी मैच से पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो गोपी सर के साथ एक बार डिस्कस करने के बाद आई थिंक उसके हिसाब से सर प्लान करके बोलेंगे।
0: सेमीफाइनल में सामने होने वाली है पहली वरीयता प्राप्त चीन से ही आने वाली लियू शेंगशू और टैन निंग की जोड़ी, जिससे पहले भी ट्रीसा और गायत्री 6 बार हार चुके हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीतना अब इस जोड़ी की फितरत है और इसीलिए शनिवार को होने वाले सेमीफाइनल का हमें बेसब्री से इंतजार है। शाम होते होते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शोर बढ़ने लगा, क्योंकि अब बारी थी बीते वर्षों में 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में पदक लाने वाली सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी की। ये जोड़ी भी पिछले कुछ महीनों में चोट से जूझती आई है, वही सात्विक की लंबे समय से तंग करने वाली कंधे की चोट।
4: Yeah, just managing myself. So sometimes I feel very good in the one tournament. The next day I feel very tight. The next day I feel very worst. The next day I feel like 100%. So it's kind of complicated with my shoulder. But I just need to manage myself and play.
0: हालांकि क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार को सामने कई मौकों पर भारत के लिए सिरदर्द बनी चीन की लियांग और वांग की जोड़ी थी। थॉमस कप, मलेशियन ओपन, चाइना मास्टर्स, हर बार ये प्रतिद्वंद्वी भारतीय जोड़ी के आड़े आए हैं, लेकिन गड़गड़ाती तालियों के बीच और भारतीय फैंस की हौसला अफजाई के समक्ष रांकी रेड्डी और शेट्टी ने एक अच्छी शुरुआत की। पहले गेम में 18-16 से लीड भी बना ली थी, लेकिन उसके बाद पासा ऐसा पलटा कि धीरे धीरे दर्शक दीर्घा से आने वाली आवाज कम होती गई और अंत में एक हताशा भरी चुप्पी में तब्दील हो गई। 18-16 से पिछड़ने वाली लियांग और वांग की जोड़ी ने 5 पॉइंट लगातार लेकर पहला गेम जीता और दूसरे गेम को तो एक तरफा ही बना डाला, 21-9 से जीत हासिल की और महज 36 मिनट में इस मुकाबले को 2 सीधे सेटों में जीतकर सेमीफाइनल का टिकट बुक कर लिया।
4: They were quite good in the first 4 shots. Whoever controlled the first 4 shots in the first set, we are controlling it. They got confident after 1 or 2 points. So if it is rally game, it's anybody's game. It's 50-50 because both have the attack. The Chinese can attack as well, we can attack as well. But the difference was only the service and service return. They got that spin, so he got little bit confident in that towards the end. He started spinning differently rather than the first one. After second game, I think they got pretty much confident.

0: they are everywhere, wherever you are hitting, they're just playing their game. So I think, yeah, kudos to them. But yeah, we could have put a little bit more tighter from our side, but yeah, I think we'll go back and learn what we did miss.
1: हार के बाद मायूस चिराग शेट्टी ने कहा,
2: पहला गेम काफी अच्छा था, 18 तक हम लीड भी कर रहे थे, जो गेम प्लान हमने सेट किया था वो काफी अच्छा वर्क भी कर रहा था. After we lost the first game, they came back a lot more harder in the second game. We played decent, I wouldn't say we played bad, but जहाँ पर हमको लगा कि हमें पॉइंट मिलेगा, मिल नहीं पाया क्योंकि they were playing quite a solid game. A lot of the points हमें लगा फिनिश हो जाएगा, वो फिनिश नहीं हुआ और काफी अच्छे से उन लोग उसको ऑफेंस में कन्वर्ट कर रहे थे. थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बट I think that is how sport is.
1: शनिवार के दिन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के कोर्ट 1 में सेमीफाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे, जहां भारतीय प्रशंसकों की नजरें गायत्री और ट्रीसा के मैच पर होंगी, तो वहीं वुमेन्स डबल्स के दूसरे सेमीफाइनल में चीन की ली और लुओ के सामने होंगी दक्षिण कोरिया से आने वाली पूर्व नंबर 1 बेक और ली की जोड़ी. महिलाओं के एकल वर्ग में दो दिग्गजों के बीच मुकाबला होगा, चीन की वांग ज़ीही के सामने होंगी मौजूदा ओलंपिक चैंपियन आन से युंग, जिनका पूरी तरह से फिट ना होने के बावजूद भी इस टूर्नामेंट पे दबदबा कायम रहा है. युंग कहती हैं कि उनका फोकस प्रतिद्वंदी पर नहीं उनके खुद पर होता है.
3: My goal is to achieve a great result in any tournament. Yeah, I just focus on myself and one point at a time.
1: दूसरे सेमीफाइनल में दिखेंगी थाईलैंड से आने वाली पोर्नपावी चोचुवांग, जिनको क्वार्टर फाइनल में वॉकओवर मिला, उनके सामने जापान की अकाने यामागुची होगी. पुरुषों के सिंगल्स में चाइनीज ताइपे के चाउटिन चांग जापान के कोडाई नारोका को चुनौती देंगे, तो दूसरे सेमीफाइनल में कनाडा के विक्टर लाई के सामने होंगे फ्रांस के एलेक्स लानियर, जो कांस्य पदक जीतने से ही बहुत खुश हैं, लेकिन पदक का रंग बदलने के लिए भी उतने ही उत्सुक.
4: I'm proud of myself. I need now to focus on for tomorrow. I want to change the color of the medal definitely, and I'm also excited about tomorrow.
1: Producer Shahnawaz Khan और editor Vandana के साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी की खास रिपोर्ट लिए आकाशवाणी के लिए मैं दर्पण टिकिया.

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप, मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ 10:04 स्टूडियो के घर में वक्त, और कार्यक्रम का पहला गीत डर फिल्म से आप सबके लिए उदित नारायण लता मंगेशकर की आवाज में।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

बहुत बहुत स्वागत है आप सबका छाया लोक के अंतर्गत नॉन स्टॉप गपशप में। और आज गपशप के लिए कोई खास विषय नहीं है, आज जो है हम बस बातें करेंगे। आज ना कोई गंभीर चर्चा, ना कोई बड़ी बहस, बस थोड़ी सी गपशप, कुछ मीठी यादें और अपने पसंदीदा गीत। क्योंकि हर बार जिंदगी में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस कभी कभी एक कप चाय, थोड़े से अपनापन, अपनी पसंद की गीत और एक शांति भरा दिन, कभी कभी यही बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ पल अपने साथ, अपने लिए कुछ पसंदीदा गीतों के साथ, थोड़ा सा जो माइंड को रिलैक्स कर दे। और जो है सैटरडे, यानी ज़्यादातर लोग जो है छुट्टी के मूड में होते हैं, वीकेंड है भाई, तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत रेडियो में बजे। और अगर मौसम थोड़ा बारिश बारिश वाला हो, थोड़ा सा जो है बादल छाए रहें, तो फिर तो और भी मज़ा आता है ना। और साथ में अगर कुछ पुराने नगमे जिसे सुनकर बस याद आ जाए, ओ ये गाना तो मैंने अपने कॉलेज टाइम पे सुना था, अच्छा ये गाना तो मेरे दोस्तों का फेवरेट था, हमारी ग्रुप में बस यही गाने तो बजते थे। रुक करते हैं गीत की ओर, सुनते हैं दो गाने बैक टू बैक।

0: क्या गाना है ना, मुझे तो बस अपने कॉलेज की याद आ गई। कुछ गाने होते ही हैं, बस सुनते ही मज़ा आ जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। वैसे आज मैं आपसे ऐसे गीत आप तक पहुंचाऊंगी जिसे सुनकर बस आपको लगेगा, अरे ये गीत तो मैंने हमेशा से सुनना चाहा है। ये गीत बस स्टार्ट सुनते ही, मतलब म्यूजिक से समझ में आ जाता है कि ये वाला गीत है। साथ में अगर अपनी पसंद की चाय हो, कॉफी हो, तो और क्या ही कहने, है ना।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

10:39 स्टूडियो के घर में वक्त 107.9 FM रेनबो दिल से दिल तक सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जिसका नाम है नॉन स्टॉप गपशप। मैं सुजेश मेहता आप सबके साथ। और दोस्तों बातें हो रही हैं, नहीं किसी एग्जैक्ट विषय पर नहीं हो रही, बस यूं ही हल्की फुल्की चिटचाट चल रही है आपके और मेरे बीच और सुन रहे हैं प्यारे प्यारे रंग में। और बातों को सिलसिले को जारी रखते रखते

0: रुक करते हैं एक चुटकी नुस्खे की ओर और जान लेते हैं कि आज ये क्या है नुस्खे की इस तिजोरी में।
1: एक चुटकी नुस्खे।

0: नुस्खों के लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि हमारे किचन में कई सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जिसे जो है हम इस्तेमाल करके अपने स्किन को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नींबू को डायरेक्टली जो है आप चेहरे पर लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना कभी कभी नुकसानदेह हो सकता है। स्किन को चमकाने के लिए नींबू लगाना अच्छा है, लेकिन इसे सीधे चेहरे पर लगाना नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। इससे जो है आपको इरिटेशन हो सकती है चेहरे पे, या फिर सन सेंसिटिविटी भी आपका जो है बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर रुक करें अगले नुस्खे की ओर, तो जो है हर नेचुरल चीज़ आपके लिए अच्छा है, ऑटोमेटिकली वो सेफ है ऐसा ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा ना हो। तो अगर आपके स्किन के लिए नींबू वगैरह आप लगा रहे हैं, तो डायरेक्टली ना लगाएं, किसी चीज़ में थोड़ा सा मिला रहे हैं ऐसे लगाएं। दूसरी नुस्खे की ओर अगर रुक करें, तो अगर आपके स्किन में ड्राइनेस है, तो आप नहाने के तुरंत बाद जो है किसी मॉइस्चराइज़र को यूज़ करते हैं कर सकते हैं जिसमें फ्रेग्रेंस ना हो। लेकिन हाँ, याद रखिए कि नहाने के 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे बाद जाके मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँ, नहीं ऐसा नहीं। आप नहाने के बाद तुरंत ही अपने मॉइस्चराइज़र को यूज़ करें, उसे याद करें। और अपने स्किन के लिए, अपने डार्क सर्कल के लिए, या फिर अपनी किसी भी तरह के सेहत से जुड़े किसी प्रॉब्लम को अगर दूर करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को जो है संतुलित भोजन दें और पर्याप्त नींद दें। जंक फूड कम खाएं, संतुलित खाना रखें और पर्याप्त नींद अपने आप को दें, और इससे जो है आपके महंगे स्किन केयर से भी ज़्यादा खूबसूरती आपके चेहरे पर, आपके वजूद में चल गई।
1: एक चुटकी नुस्खे

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

आप सुन रहे कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप, मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ, और जाते जाते छोड़ जाऊंगी आपको इस प्यारे से गीत के साथ। 107.8 FM ट्रेनबो, दिल से दिल तक सुन रहे थे आप इस कार्यक्रम को, और इसी गीत के साथ मैं कहूंगी आप सबको टाटा एंड बाय बाय। सुनते रहिए, साथ रहिए।

0: आने वाले के घर में घर और दिल दोनों आबाद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे आपका इस्तकबाल करें, कैसे आपका अभिनंदन करें और कैसे आपका स्वागत करें। बस फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि दोपहर की नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों खा पी कर थोड़े थोड़े आराम में होंगे, हो सकता है थोड़ी थोड़ी सी नींदों में भी होंगे, लेकिन फिलहाल धूम धड़ाका करने तीन का तड़का में आ चुकी है आपकी दोस्त, जी हाँ कोई और नहीं सविता।
1: भूल के गोले ओ बम, रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब। शम्मा हूँ नई नई, जलूंगी

पर तीन का तड़का। और उम्मीद है कि आपकी जो आंखें थोड़ी थोड़ी इसो सी उन्नीती सी होंगी, बस उठकर बैठ गए होंगे और फ्लोर पर आने ही वाले होंगे, क्योंकि एक और ऐसा गीत बजने वाला है कि श्योरली आप उठकर बैठ

जी हाँ दोस्तों, हुस्न का और गीतों का मजा लेते लेते हम आ गए हैं कार्यक्रम 3 का तड़का में। और शुरू हो चुका है 3 का तड़का, जिसे सुन करके आपका दिल है धड़का। दोस्तों मैं रहूंगी पूरे 4 बजे तक, और आइए कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है अखबारों की खास सुर्खियों के साथ। छा गई त्रिशा गायत्री, जी हाँ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप मेडल पक्का, और चीनी जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची हमारी खिलाड़ी। बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में विमेंस डबल्स इवेंट का क्वार्टर फाइनल मंगलवार, मुकाबला शुक्रवार को खेला गया। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने भारत के लिए मेडल पक्का कर लिया है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में चीन की शे जिया ही फान और छांग शु जियान की जोड़ी को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इसी के साथ भारत का विमेंस डबल्स में कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का हो गया है, हालांकि आगे गोल्ड का भी चांस है। तो हम तो दुआएं करते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं हमारी खिलाड़ियों को कि हमारे हिंदुस्तान की खिलाड़ियों की झोली में गोल्ड मेडल आए। तो दोस्तों 15 साल के बाद भारत की झोली में मेडल पक्का हुआ है, और अब आगे बढ़ेंगे और आपके लिए गीत शान की आवाज़ में, वो पहली बार।

जी हाँ दोस्तों, वो पहली बार नजरों का नजरों से मिलना, नजरों ही नजरों में कुछ कह देना, नजरों ही नजरों में इनकार कर देना, फिर इकरार करना, फिर इसरार करना, फिर उनका छूना, वो हाथों में हाथ लिए पहली बार कुछ कह देना, भला कौन भूल सकता है ये आवारापन। क्या किसी की निगाहों से कभी या किसी की गुस्ताखियों से बचा है?

जी हाँ दोस्तों, हमारी आवारगी की दास्तां तो दस्तूर चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल हम आपके साथ साझा करेंगे परियोजना प्रस्तुति। जी हाँ, परियोजना प्रस्तुति करने का वक्त आ चुका है। और आज की परियोजना प्रस्तुति क्या है दोस्तों? भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई अनेक योजनाओं में से हमारी कोशिश रहती है कि हम हर दिन एक ना एक परियोजना प्रस्तुति आपके समक्ष करें, ताकि आप उनके प्रति जागरूक हो सकें और उनका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज की हमारी जो परियोजना प्रस्तुति है, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना है। ये अब तक कुल 16,912 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं 30/6/2025 तक। मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत 2,110 दवाइयां और 315 शल्य चिकित्सा सामग्री, चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं और उपकरण शामिल हैं, जिनमें हृदय रोग, कैंसर रोधी, मधुमेह रोधी, संक्रमण रोधी, एलर्जी रोधी और पाचन संबंधी दवाएं और पोषक तत्व जैसे सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह शामिल हैं। प्रयोगशाला अभिकर्मकों और टीकों को छोड़कर राष्ट्रीय आवश्यक औषधियों की सूची में शामिल लगभग सभी जेनेरिक दवाएं इस योजना के अंतर्गत आती हैं। जन औषधि केंद्र में सुचारू आपूर्ति और उत्पाद उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक संपूर्ण आईटी आधारित आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें एक केंद्रीय गोदाम, 4 क्षेत्रीय गोदाम और देश भर में नियुक्त 39 वितरक शामिल हैं। 400 तेजी से बिकने वाले उत्पादों की उपलब्धता की नियमित निगरानी की जाती है। इसके अलावा योजना के उत्पाद समूह में सबसे अधिक बिकने वाली 100 दवाओं और बाजार में तेजी से बिकने वाली 100 दवाओं सहित 200 दवाओं के लिए न्यूनतम स्टॉक अनिवार्य किया गया है। इस स्टॉक अनिवार्यता के तहत जन औषधि केंद्र स्वामी अपने द्वारा रखे गए 200 दवाओं के स्टॉक के आधार पर प्रोत्साहन राशि का दावा करने के पात्र हो जाते हैं। सरकार ने सभी को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की है। इस योजना के परिणाम स्वरूप पिछले 11 वर्षों में ब्रांडेड दवाओं की कीमतों की तुलना में नागरिकों को लगभग 38,000 करोड़ की अनुमानित बचत हुई है, जिससे परिवारों द्वारा स्वास्थ्य व्यय में भारी कमी आई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल स्वास्थ्य व्यय का 62.6% हिस्सा स्वास्थ्य व्यय पर खर्च होता था, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में घटकर 39

4% हो गया है। जन औषधि दवाओं की पहुंच को और अधिक विस्तारित करने और इस प्रकार जेब से होने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। जन औषधि केंद्रों को खोलने में सरकार ने फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया है, जिसमें व्यक्तिगत उद्यमियों, गैर सरकारी संगठनों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, फर्मों, निजी कंपनियों, सभी से फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया www.janaushadhi.gov.in की वेबसाइट के माध्यम से देश भर से विभिन्न ब्लॉकों और तहसीलों सहित ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आज परियोजना प्रस्तुति की, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता। और फिलहाल तो आपसे कुछ यही कहना है।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर, रेनबो पर। जी हाँ दोस्तों, मैं तो आपसे मांगती हूँ माफी हाथ जोड़कर, बिल्कुल क्यों, क्योंकि आप सोने वाले थे लेकिन मैंने उड़ा दी है आपकी नींद, और ये तो मेरा इरादा था, बिल्कुल मैं ये सोच कर आई थी, ये प्री प्लान है। और दोस्तों इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि तीन का तड़का वाला जो हमारा सेगमेंट है वो आपको सोने देने वाला है ही नहीं, ये बना ही इसलिए नहीं है। और हाँ दोस्तों, कल कई सारी फिल्में रिलीज हो गई हैं कुछ OTT पर, तो क्या आपको पता है, यदि नहीं तो झटपट मैं बता देती हूँ, 21 अगस्त को कल यानी रिलीज हुई जना नायकन, यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो G5 पर रिलीज है। वेलकम टू द जंगल यह कॉमेडी जॉनर की फिल्म है जो Hotstar पर आई है। प्यार प्रेमा कल्याणम यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो Netflix पर उपलब्ध है। चेन्नई लव स्टोरी यह एक रोमांटिक ड्रामा है जो Sony Live पर रिलीज हुई है। और फेसिंग अल चापो यह क्राइम थ्रिलर सीरीज Netflix पर है। क्लीन अप कंपनी यह नई हिंदी सीरीज अमेजन MX प्लेयर पर रिलीज हुई है। स्नैक्स 5 मॉन्स्टर सिटी ये एडवेंचर थ्रिलर फिल्म Lionsgate प्ले पर रिलीज हुई है। तो दोस्तों ये सारी फिल्में हैं जो कि रिलीज हुई हैं OTT पर। तो आज है शनिवार, कल भी तो आपके हाथ में दिन है, यदि आज का कुछ प्लान है तो कल देख डालिए।

जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम में बज चुके हैं फिलहाल 3:36 और 29 सेकेंड। दोस्तों वक्त धीरे धीरे यूं ही गुजरता चला जा रहा है और गाने का जो जुनून है ना वो आगे कुछ यूं ही बढ़ता चला जा रहा है। अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत।

हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष तकनीक को जीवन से जोड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है। अंतरिक्ष स्टार्टअप से कृषि, डेयरी, पर्यावरण में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने का आह्वान हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। वो कहते हैं कि युवा उद्यमियों का आह्वान उन्होंने किया है। वो कहते हैं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को कृषि, पशुधन प्रबंधन, डेयरी, पर्यावरण और आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े अन्य क्षेत्रों तक ले जाएं। स्टार्टअप कंपनियों के सीईओ एवं संस्थापकों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ अंतरिक्ष गतिविधियों से जुड़ी 20 स्टार्टअप कंपनियों के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारियों एवं संस्थापकों के साथ बातचीत करते हुए वो कहते हैं कि अंतरिक्ष कंपनियों और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों के बीच अधिक सहयोग से इन प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार भविष्य के लिए देश की

क्षमताओं को विकसित करने में अंतरिक्ष स्टार्टअप के साथ खड़ी रहेगी। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में दुनिया के सामने एक मजबूत नमोन्मेषी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य मॉडल पेश कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अटल टिंकरिंग लैब के साथ जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की युवा ऊर्जा से मिलना शानदार रहा। इन युवा उद्यमियों और नमोन्मेषक के एक नए और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में कदम रखकर काफी साहस दिखाया है। उन्होंने जोखिम उठाया, सुधार प्रक्रिया पर भरोसा किया और लगातार प्रयास किए। इसके परिणाम स्वरूप भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में काफी प्रगति की है। साथ ही भारत का एक निजी अंतरिक्ष क्षेत्र देश एवं दुनिया के लिए एक बड़ी ताकत बन सकता है। ऐसा परिवेश विकसित किया जाना चाहिए जहां दुनिया अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए भारत की ओर देखे। तो दोस्तों, अंतरिक्ष तकनीक से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा, ये आज की एक खास सुर्खी थी जो हमने की आपके साथ साझा।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर, रेनबो पर।
1: जी हाँ दोस्तों, ये गीत आपने सुना फिल्मों मशीन से जुबिन नौटियाल की आवाज़ों में। गीतकार अराफात महमूद और महमूद इरफान, मोहम्मद इरफान, संगीतबद्ध किया तनिष्क बागची ने। जी हाँ, देखो हम बैठे थे अभी अभी और वक्त कब कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। 50 मिनट पूरे हो चुके हैं दोस्तों, आपसे बस थोड़ी ही देर में इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। लेकिन लेकिन लेकिन दुखी होने की बात नहीं है, निराश भी नहीं होना, क्योंकि जी हाँ 5:15 पर चाय एंड क्लासिक्स में हमारी मुलाकात होने वाली है FM गोड यानी खरा सोना पर। जी हाँ 100.1 पर हम मिलने वाले हैं, 100.1 पर हम आपके साथ फिर से मिलेंगे 5:15 चाय एंड क्लासिक्स में। और 7 बजे, जी हाँ 7 बजे छायालोक में यहीं पर इसी जगह पर आपके साथ होगी मुलाकात। तो बस परेशान होने की या दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं एकदम निराश नहीं हूँ क्योंकि बैक टू बैक आपके पास आने वाली हूँ। लेकिन कुछ देर के लिए, हाँ कुछ समय के लिए चाय वाय पीने तो जाना पड़ेगा ना। तो दोस्तों तीन का तड़का आप सुन रहे हैं और साथ में धीरे धीरे आपके हाथ में चाय की प्याली भी आ ही चुकी होगी आई एम श्योर। और हम भी चाय बस ये प्रोग्राम खत्म करने के बाद पियेंगे।

फिल्म गुस्ताख इश्क से ये गीत आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में, गीतकार गुलजार, संगीतबद्ध किया विशाल भारद्वाज ने, और कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके समक्ष पेश करने का वक्त आ चुका है तीन का तड़का में। जी हाँ, तीन का तड़का आपकी दोस्त सविता कर रही थी पेश। फिलहाल आपसे चाहेगी इजाज़त, मुलाकात होगी हमारी 5:15 चाय एंड क्लासिक्स FM गोल्ड यानी खरा सोना पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और चाय की सिप लेते लेते कार्यक्रम का ये अंतिम गीत मैं करूंगी आपके सामने पेश, और आपसे लूंगी एक वादा कि मुस्कुराना जरूर, कभी उदास मत हो जाना। जी हाँ, जाने जाना, ये है जिंदगी, बस खुशियों का तराना।

दोस्तों स्वागत है, अभिनंदन है, वेरी गुड इवनिंग। जी हाँ, शाम की नमस्कार चाय की चुस्कियों के साथ मैं आ गई हूँ, आपकी दोस्त सविता पोद्दार। जी हाँ, छाया लोक में आज अचानक आपके साथ हमारी आपकी मुलाकात हो गई। और छाया लोक करने के लिए एक मुलाकात जरूरी तो है।

जी हाँ दोस्तों, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम, बिल्कुल। छाया लोक करने के लिए इस पार हमें और उस पार आपका आना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है, मुझे पूरी और विश्वास है कि आप सभी छाया लोक में आ चुके होंगे अपने अपने फोन या फिर रेडियो।

सेट के पास और मैं हूँ आपकी दोस्त सविता, बेकरारी से आपसे मुलाकात करने के लिए कर रही हूँ इंतज़ार। जी हाँ, आज है जाने अनजाने। बिल्कुल आज हम किसी भी, हमारे यहाँ बहुत सारी फिल्में हिंदी सिनेमा में बनी और वो फिल्में बनने के दौरान ऐसी बहुत सारे सीन्स और दृश्य होते हैं जिनकी कोई कोई खास स्टोरी बन जाती है दोस्तों, और उन स्टोरी के पीछे कुछ ऐसे मज़ेदार तथ्य होते हैं, कुछ ऐसे रोचक घटनाएं घट जाती हैं कि जो दास्तां बन जाती है। ऐसी ही कुछ घटनाओं को लेकर के, ऐसी ही कुछ बातों को लेकर हम आ चुके हैं कार्यक्रम, जी हाँ, छाया लोक में। लेकिन लेकिन लेकिन जी, आप क्या इंतज़ार भी मुझे है। 2213-1341 पर आप जुड़ सकते हैं और ऐसी ही कोई ख़ास मज़ेदार किस्सा यदि आप बताना चाहते हैं किसी भी गीत को लेकर, किसी भी दृश्य को लेकर, किसी भी फिल्म को लेकर, तो आपका स्वागत है। क्योंकि आप हमें कुछ ख़ास बात बताएंगे तो हमें भी तो मज़ा आएगा ना। तो दोस्तों, इंतज़ार कर रही है आपकी दोस्त।

जी हाँ, रफ्तार रफ्तार हम सफ़र तय कर रहे हैं और अभी तो शुरुआत हुई है हमारे सफ़र की। तो बस पूरे 2 घंटे आपके साथ छाया लोक है और 1 घंटा मैं रहूँगी और दूसरे हाफ घंटे में यानी 8 से 9 में रहेगी संचेता नंदी। तो दोस्तों चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत तो हो चुकी है। फिल्म सिर्फ तुमसे हमने सुनवाया और अभी की सुनवाया राज 3 का, के की आवाज़ में संजय मासूम गीतकार और संगीतबद्ध किया जीत गांगुली ने। दोस्तों शुरुआत करते हैं जाने अनजाने की। एक फिल्म आई थी अंधाधुन, जी इसकी शूटिंग के दौरान, जी हाँ इसमें आयुष्मान खुराना ने एक अंधे व्यक्ति का रोल किया है और वो पुणे में उनकी शूटिंग चल रही थी लेकिन वो पुणे में घूमते रहे सड़कों पर और किसी ने उन्हें पहचाना ही नहीं। हुआ क्या हुआ, बस इतना कि अपनी दृष्टि को 80% तक प्रभावित करने वाले विशेष लेंस का उपयोग करने से लेकर पियानो बजाना सीखने और बॉडी डबल का इस्तेमाल ना करने तक आयुष्मान खुराना ने अंधाधुन में अपने किरदार की तैयारी के लिए वाकई इतनी मेहनत की कि उन्होंने खुद को किरदार में इतनी खूबसूरती से ढाल लिया कि वो खुद पुणे की सड़कों पर छड़ी लेकर और काले चश्मे के साथ घूम रहे थे तो लोगों ने उन्हें पहचाना तक नहीं। जी हाँ दोस्तों, अंधाधुन में उन्होंने अपने आप को कुछ ऐसा ढाल लिया था कैरेक्टर में और अपने आप को इस तरह से तैयार कर लिया कि वो चश्मा लगा के छड़ी लेकर के आराम से घूम रहे थे और लोग पहचाने ही नहीं कि ये अभिनेता आयुष्मान खुराना है। तो नैनो दा कसूर किसका?

0: जाने अनजाने।
1: जी हाँ दोस्तों, जाने अनजाने आज छाया लोक में हम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कुछ ऐसे सीन्स की, कुछ ऐसी घटनाओं की जो फिल्मों को बनाने के दौरान घटती हैं। आप भी यदि चाहते हैं हमारे साथ शेयर करना कुछ ऐसी बातें, खास रोचक किस्से, तो कर सकते हैं हमारे साथ 2213-1341 पर। आपकी दोस्त सविता कर रही है आपका इंतज़ार। जी हाँ, हमारे एक दो कॉलर के फ़ोन आए लेकिन किसी कारण से उनके फ़ोन लाइंस में प्रॉब्लम होने के कारण हम बात नहीं कर पाए। दोस्तों, गैंग्स ऑफ वासेपुर, जी हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के बारे में भी कुछ ख़ास बातें जानी जा सकती हैं। जैसे कि इस फिल्म में हुआ ये कि शमशाद, जो कि राजकुमार राव और डेफिनेट जिशान के बीच का अब तक मशहूर हो चुका पीछा करने वाला दृश्य एक्चुअली मूल रूप से स्क्रिप्ट में था ही नहीं। दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ कि जिसको कि उस सीन को रखना पड़ा। राजकुमार और जिशान अपने किरदारों में इतने डूब गए थे कि दृश्य की शूटिंग के दौरान ही वे दौड़ने लगे। फिर क्या हुआ, उन्हें काम करते देख अनुराग ने उस दृश्य को फिल्म में शामिल करने का फैसला किया। सहायक निर्देशक श्लोक शर्मा ने अभिनेताओं को वॉकी टॉकी के जरिए निर्देश देते हुए छतों से शूटिंग करते हुए और दृश्य की गंभीरता को बढ़ाने के लिए जानबूझकर ट्रैफिक जाम करवाते हुए उस दृश्य को फिल्माया। और तो और, पीछा करने वाले दृश्य के अंतिम भाग की शूटिंग के दौरान जीशान रेलवे ट्रैक पर गिर भी गए थे। तो दोस्तों, गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो सीन था जिसमें राजकुमार राव और जीशान के बीच जो पीछा कर रहे थे, जो दृश्य था, वो मूल रूप से स्क्रिप्ट में था ही नहीं। फिलहाल एक और मूवी की मैं बात करूंगी। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जी हाँ, ये फिल्म तो आपने देखी जरूर होगी और इस फिल्म के बारे में तो ढेर सारे किस्से हैं ही और ये एक के बाद एक रिकॉर्ड बना भी रही है। दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे यादगार रोमांटिक दृश्यों में से एक दृश्य और भी था। कौन सा था वो दृश्य, जी बताऊंगी, लेकिन पहले जब तक है जान फिल्म का एक गीत है जो मुझे भी बड़ा पसंद है, वो सुनवाऊंगी।

जी हाँ दोस्तों, ये ट्रैक आपने सुना जब तक है जान फिल्म से राघव माथुर और शिल्पा राव की आवाज़ों में, गीतकार गुलजार, संगीतबद्ध किया यार रहमान ने। सुन रहे हैं छायालोक सविता के साथ और जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे एक कॉलर, तो देखें वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन उनकी आवाज़ नहीं हम तक आ रही। हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? वो किसी कारण से उनकी लाइन कट चुकी है। और दोस्तों, फिलहाल के लिए हम अपनी बात को रखेंगे जारी। और हम बात कर रहे थे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे सीन की। जी हाँ, बॉलीवुड में सबसे यादगार रोमांटिक दृश्यों में से एक वो दृश्य है जब राज यानी शाहरुख खान सिमरन काजोल से कहता है पलट पलट पलट। वो मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तो मूल स्क्रिप्ट में था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, निर्देशक आदित्य चोपड़ा को लगा कि राज को अपने प्यार का इजहार सीधे साधे ना कहते हुए करते हुए करना चाहिए सीधे, बल्कि आई लव यू कहने के बजाय उन्होंने शाहरुख खान से कहा कि वो सिर्फ पलट कहें और देखें कि सिमरन पीछे मुड़कर देखती है या नहीं। अगर वो देखती है तो इसका मतलब होता है कि

वो भी उनसे प्यार करती है। शाहरुख खान को यकीन नहीं था कि ये सीन चलेगा, लेकिन जब शूटिंग हुई तो ठीक काजोल ने उन्हें वैसे ही पीछे मुड़कर देखा जैसा चोपड़ा यानी जो आदित्य चोपड़ा थे चाहते थे, और वो पल इतना परफेक्ट था कि ये बॉलीवुड के सबसे यादगार रोमांटिक सीन्स में बन गया। जी हाँ दोस्तों, जो कि मूल स्क्रिप्ट में नहीं था, लेकिन वो स्क्रिप्ट में ना होते हुए भी यादगार रोमांटिक सीन्स में बन गया।

दोस्तों, जाने अनजाने में बात अब हम करेंगे। एक और फिल्म आई थी जो सुपर डुपर हिट हुई थी। जी हाँ, बात करेंगे हम जब वी मेट फिल्म की। इस फिल्म में एक दृश्य था होटल डिसेंट के रिसेप्शनिस्ट का, और उसका किरदार निभाने वाले जो अभिनेता टेडी मोर है ना, वो कौन है जानते हैं? वो फिल्म के कला निर्देशक भी हैं। जी हाँ, टीम ने इस दृश्य के लिए मुंबई से मनाली में एक अभिनेता को बुलाने की कोशिश की, लेकिन इस विशेष दृश्य की शूटिंग की अंतिम तिथि तय नहीं हो सकी थी, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर कोई अभिनेता उपलब्ध ही नहीं हो सका, आ ही नहीं पाए वो बॉम्बे से मनाली। अब क्या हो, अंत में क्या किया कि वो जो रिसेप्शन का डिज़ाइन तैयार करने वाले टेडी मौर्य थे ना, उन्हीं ने रिसेप्शनिस्ट की भूमिका निभा ली। तो दोस्तों, जो किरदार उस किरदार के लिए नियुक्त ही नहीं किया गया था, उस जगह पर वो दूसरा व्यक्ति जो कला निर्देशक था, उन्हीं ने उस रिसेप्शनिस्ट की भूमिका कर ली। तो कई बार ऐसा हो जाता है फिल्म मेकिंग के दौरान।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: जाने अनजाने।
2: दोस्तों, जाने अनजाने में एक बार फिर से हम आ गए हैं लेकर कार्यक्रम छायालोक में, और बात अब करेंगे एक और फिल्म की। जी, उसके एक जाने अनजाने सीन के बारे में बात करेंगे। फिल्म है दिलवाले, काजोल और शाहरुख खान। जी, उनकी शूटिंग हो रही थी आइसलैंड में और गाना था गेरुआ। गेरुआ गाने की शूटिंग हो रही थी आइसलैंड में, और एक दृश्य की शूटिंग के दौरान दोनों एक झरने के पीछे थे। शाहरुख खान चट्टानों पर फिसल गए। अगर काजोल ने उन्हें ना पकड़ा होता तो दोस्तों वो गिर तो जाते, उनकी जान के लिए भी खतरा हो जाता। कई बार ऐसे रिस्की सीन्स के सामने से गुजरना होता है हमारे अभिनेताओं को, हमारे निर्देशकों को, पूरी कास्टिंग क्रू को। बेशक शूटिंग की जगह को देखते हुए क्रू को अन्य भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें कई जुगाड़ करने पड़े उस शूटिंग के दौरान। काजोल की ड्रेस पर पत्थर रखना पड़ा ताकि वो स्कर्ट उड़ ना जाए। एक हिमखंड यानी एक आइस कहते ना, आइस का टुकड़ा था जो कि उसे बांधना पड़ा ताकि शूटिंग के दौरान वो टूट ना जाए। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक दोस्त, तो हम उनको डायरेक्ट ले लेते हैं फ़ोन कॉल पर। हेलो हेलो, वो हमारे साथ जुड़े लेकिन किसी वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही। बात हमने की गेरुआ फिल्म, दिलवाले फिल्म के गेरुआ गाने की, तो जब बात की है इसकी तो ये गाना सुनवाना तो श्योर लाजिम है ही।

0: अरिजीत और अंतरा मित्रा की आवाज़ में आपने सुना फिल्म दिलवाले से ये गीत गेरुआ। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक साथी, तो देखिए वो क्या कहते हैं। हेलो
1: हेलो, हाँ कौन बोल रही हैं?
0: हाँ पायल, वो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बताओ क्या हाल है।
1: সিনটা দেখিয়েছিল না, তোমরা হয়তো জানো প্রত্যেকেই যে ওই শাহরুখ খান যখন বেরিয়ে এলেন মানে জেল থেকে, একটা সিন ছিল আর সেখানে হিরোইনের সাথে যখন মিটটা হলো, দেখা হলো, তো আমার ওই সিনটা সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে। মানে সেই সিনটা না মানে আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়ে দেয় না, আমাদের মেমোরিতে অনেক কিছু মানে অনেকটা অনেক কিছু ধরিয়ে দেয় দিদি। যে ব্যাপারটা হচ্ছে ওরা তো দেখো ফার্স্ট থেকে তো কখনো মিলতে পারেনি, তাই না? সেভাবে ওদের কোনো পরিণতি ছিল না লাভে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিল্মটায় গিয়ে দেখানো হয়েছে যে ওরা দুজন দুজনের জন্য তাও কতটা ওয়েট করে গেছে সেই বৃদ্ধ বয়স অব্দি, তাই না? তো সত্যি এই ফিল্মটা মানে জাস্ট ভোলা যাবে না, এটুখানি বলবো।
0: থ্যাংক ইউ পায়েল। तो पायल ने अपने मन की बात की और हम बताएंगे आपको एक सीन और, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। जी हाँ, सबसे मज़ेदार सीन है ये बैगवती वाला। जी हाँ, आपने भी एंजॉय किया होगा बैगवती। जी हाँ, बैगवती जिसमें फरहान अख्तर और अभय देओल एक डिज़ाइनर हैंडबैग को पुतले पर रखकर बड़े ही VIP बैग की तरह उसे ट्रीट करते हैं। स्क्रीन पर दोस्तों हम देख नहीं पाते, लेकिन कैटरीना कैफ इसमें इस सीन के दौरान अपनी हंसी रोक ही नहीं पाई है। पूरी कास्ट, खासकर फरहान अख्तर जब अपने डायलॉग्स को लगातार इम्प्रोवाइज करते हैं, तब तक कैटरीना कैफ लगातार हंसती रहती हैं, उनका हंसी रोकना मुमकिन नहीं होता है। कितनी मुश्किल से वो रोकती हैं, तब कई रिटेक के बाद आखिरकार वो अपनी हंसी पर काबू पा सकी हैं और सीन को किया गया। लेकिन सीन में उनकी सच्ची मुस्कान इसे और भी मज़ेदार बना देती है।

0: जी हाँ दोस्तों, सूरज की बाहों से धीरे धीरे हम चंद्रमा के आगोश की तरफ बढ़ चुके हैं और वक्त भी इतना कम हो चुका है कि 7:55 हो चुके हैं और मेरा तो वक्त कहने के लिए बाय बाय आ चुका है, मगर इससे पहले मैं एक अपने कॉलर हैं उनसे ज़रूर बात करूँगी। हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग जी, आपका नाम बताइए।
1: शुभदीप, बेलगोरिया से।
0: ओ शुभदीप जी, आपसे मैंने कल भी बात की थी।
1: जी
0: जी, मैं एक्चुअली बैक आ गई।
1: हाँ, बैक टू बैक, और आप जब है प्रोग्राम में तो मुझे एक्चुअली बात करने में बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए शुक्रिया, बताइए।
1: एक डीडीएलजे के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ। ये एक्चुअली जब ये फिल्म का मतलब प्लानिंग चल रहा था तो आदित्य चोपड़ा ने एक्चुअली एक मैंने ह्यूमरस है, बहुत काफी फनी है कि उन्होंने टॉम क्रूज को एक्चुअली सोचा था इस रोल में देना चाहिए, लेकिन उस समय यश चोपड़ा ने बोले कि ये जो अमेरिकन एक्टर है ये तो पहले ऐसे रोल में आएंगे नहीं, तो इसके लिए बाद में शाहरुख खान को एक्चुअली दिया गया था वो रोल।
0: अच्छा,
1: क्योंकि वो इंटरनेशनल जगह में हुआ था, वो दिखा रहा था कि यूएस में पलाबरा है तो उसका। और एक चीज मुझे बाजीगर में मुझे पता है कि बाजीगर जब हो रहा था तो एक्चुअली सलमान खान को पहले कास्ट करने का था, तो सलमान खान ने शायद ये सोच के रिजेक्ट किया था कि इतना डार्क शेड कैरेक्टर, जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो उनका, जो उस समय सलमान खान का हमेशा गुडी गुडी इमेज था।
0: जी जी जी,
1: हाँ, मैंने प्यार किया उसके बाद वाला, तो उससे हटके ये चैलेंज शाहरुख खान ने लिया था उस समय। इवन अनिल कपूर को भी वो मिला था, लेकिन अनिल कपूर ने भी वो डिक्लाइन कर।
0: और मैं आपको ये जो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म के बारे में बताऊं कि इसकी शूटिंग स्विट्जरलैंड में भी हुई थी।
1: हाँ,
0: और ये मैं बहुत लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि वो जगह पर मैं जा सकी, क्लीवलैंड।
1: अरे अरे अरे,
0: स्विट्जरलैंड के तो,
1: हाँ, मतलब इंडिया में कश्मीर और अगर इंटरनेशनल फ्रंट देखे तो स्विट्जरलैंड।
0: जी, स्विट्जरलैंड में ये क्लीवलैंड बोल के एक जगह है।
1: अच्छा, क्लीवलैंड। हाँ
0: जी, ये इतनी खूबसूरत है, मैं आपको बताऊं कि इतनी खूबसूरत है कि वहां से आपका आने का दिल नहीं करेगा। और वो जो चोपड़ा जी थे ना, उनके पिताजी यश चोपड़ा, उनकी वहां पर स्टैचू लगी हुई है एक पार्क में, क्योंकि उनकी इस फिल्म के बनाने के बाद वहां पर टूरिस्ट बहुत जाना ज्यादा बढ़ गए थे, तो वहां की सरकार ने, मतलब स्विट्जरलैंड की सरकार ने उनकी स्टैचू वहां लगाई है, तो ये हमारे भारत के लिए भी एक गर्व
1: की बात है।
0: जी,
1: इवन रिसेंटली शाहरुख खान और काजोल का भी एक स्टैचू हुआ है वहां पे।
0: अच्छा, वो हमने नहीं देखा, लेकिन हमने ये देखा, तो मैं भी थोड़ी सी ब्लेस्ड हूँ।
1: बहुत खुशकिस्मत है, बहुत ही ज्यादा। और शायद आपने वो ट्रेन राइड भी की होगी।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो ट्रेन राइड मैंने की थी। लाल रंग की ट्रेन है वो,
1: लाल,
0: और बड़ी ही खूबसूरत ट्रेन है, उसकी राइड हमने की थी। वो टॉप, एकदम टॉप जगह पर जाती है,
1: तब लगेगा कि ये स्वर्ग है, सचमुच का स्वर्ग।
0: जी जी जी, तो चलिए शुभजीत जी, आपके साथ बात हुई और मुझे भी टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है, क्योंकि घड़ी की सुइयां हमें दिखा रही हैं कि अब तो मैं विदा लूं।
1: बाय बाय
0: बाय। तो दोस्तों, हमारी बात हुई शुभजीत से और अंतिम गीत मैं प्ले करना चाहती थी, लेकिन करने का वक्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि घड़ी ने हमें इशारा कर दिया है कि सविता अब तुम जाओ। अब वेट कर रही है संचिता नंदी, जो कि आने वाली है इस हॉट सीट पर। यानी सोचिए, ये सीट बड़ी इम्पॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि आप जैसे दोस्त जब मिलते हैं तो इम्पॉर्टेंट होगी नेचुरली। तो मैं तो चली फिलहाल के लिए, अब मैं कब आऊँगी ये तो मैं बाद में ही बताऊंगी। फिलहाल गुड नाइट, शब्बा खैर, खुश रहिए, शुभ रात्रि, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपकी दोस्त सविता को दीजिए फिलहाल इजाजत।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम है जाने अनजाने के बाद कुछ आपको जानने की बारी है। आपके द्वारा बताए हुए उन गीतों को लेकर हमें आगे का रास्ता जो है तय करना है। आपके साथ हूं मैं संचिता और इस वक्त 8:03। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो कि 2004 की एक फिल्म है वास्तविकता के बेहद करीब रखने के लिए निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने असाधारण कदम उठाया था। फिल्म का एक महत्वपूर्ण दृश्य जो है अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39A में शूट किया गया था और ये भारतीय सिनेमा के लिए विशेष उपलब्धि थी। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन क्योंकि फिल्म को वास्तविक नासा परिसर में शूटिंग की अनुमति मिली थी, शाहरुख खान का मोहन भार्गव नासा में काम करने वाला वैज्ञानिक है और कहानी के माध्यम से तकनीक तथा ग्रामीण भारत के विकास का सुंदर एक संबंध जो है दिखाया गया है। तो चलिए शुरुआत में उदित नारायण और मास्टर विघ्नेश की है आवाज। फिल्म का नाम तो अभी तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, मास्टर विघ्नेश बेबी पूजा और बच्चों की आवाज में है ये गीत ये तारा वो तारा। स्वदेश फिल्म से जावेद अख्तर ने इस गीत के बोल लिखे थे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 2213-1341 के साथ।

0: ये तारा वो तारा हर तारा लगे सबको प्यारा। आकाशवाणी कोलकाता का ये एफएम चैनल है और आप जिस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं वो है छायालोक। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, आपके फरमाइशी गीतों के साथ। हेलो,
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, और कौन बोल रहे हैं?
1: विमल मित्तल और राजबुलहा ठोकरे से बोल रहा हूँ दीदी।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है विमल जी। आप ये बताइए,
1: बोलिए।
0: हाँ, आप ये बताइए कि आज फरमाइशी जो गीत आपको सुनाना है वो कौन सा गीत है?
1: आपके पास मन छवि मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे एक गाना हो तो आप सुना दीजिए।
0: हाँ, तो मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे ये किसी विशेष के लिए है तो उनका नाम भी बता दीजिए।
1: देखिए दीदी, विशेष के लिए नहीं, सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए,
0: सबके लिए,
1: प्रेमों का, सब दोस्तों के लिए,
0: सब दोस्तों के लिए।
1: बहुत अच्छा है गाना, बहुत अच्छा है।
0: अच्छा, आपने, आप आमिर खान के फैन है या आपने बस ये गाना पसंद है इसलिए आपने इसकी फरमाइश?
1: आमिर खान का फैन हो या उदित नारायण का फैन हो?
0: उदित नारायण की आवाज के चाहने वाले है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल मित्रा जी।
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे ये जो 1999 की जो फिल्म है, साउंड ट्रैक का 1990 के दशक का एक लोकप्रिय रोमांटिक हिंदी गीत तो है ही। संजीव दर्शन द्वारा, संगीतबद्ध समीर द्वारा लिखे गए बोलो और उदित नारायण और अलका याग्निक ने क्या काम किया था। यूं कह सकते हैं कि प्रेम में पढ़ने और भावनात्मक तरप के बारे में अगर कोई भावपूर्ण गीत बना है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो उस चार्टबस्टर का ये एक अव्वल ट्रैक कह सकते हैं इसे। तो चलिए सुन लेते हैं विमल मित्रा जी की ओर से, हम सभी को इन्होंने डेडिकेट किया है ये गीत। कार्यक्रम है छायालोक और आप जुड़े हुए हैं संचिता के साथ 107 एफएम रेनबो।

0: वाकई बहुत बड़ा प्रश्न है ये, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे। 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम है छायालोक के अंतर्गत कुछ फरमाइशी गीत जिसे आप हमें सुनाना चाह रहे हैं, तो चलिए ऐसे ही कुछ गीतों के साथ ये सफर तय करते हैं दोनों मिलकर। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: जी नमस्कार, मैं सुमित्रा बोल रही हूँ उलुबेरिया से।
0: सुमित्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए कि कौन सी गीत जो है आप सुनना चाहती हैं?
1: जी मैं भ्रष्टाचार फिल्म से तेरे नैना मेरे नैना से ये अच्छा। गाना सुनना चाहती हूँ।
0: सुरेश वाडकर का और अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ है ना?
1: जी
0: और कोई विशेष कारण है कि क्यों आप सुनना चाहती है इस गीत को, मेरे नैना तेरे नैनो की भाषा बोले?
1: विशेष कारण नहीं है लेकिन फिर भी ये गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: पसंद है, अच्छा जी। तो चलिए आप आपकी पसंद से हम भी बहुत खुश हैं और आगे हम ये गीत को जरूर पेश करेंगे सबके लिए। हमारे साथ थी सुमित्रा जी और इन्होंने सबके लिए जिस गीत की फरमाइश की है वो है तेरे नैना मेरे नैनो की। सुरेश वाडकर अनुराधा पौडवाल की आवाज़, प्रेम कलाम भ्रष्टाचार इन्होंने बता दिया, आनंद बख्शी के बोल को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया और ये जो फिल्म है मिथुन चक्रवर्ती और रेखा की फिल्म जो कि 1989 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के गीत इतने प्यारे थे कि आज भी हम इन्हें गुनगुनाते हैं। तो चलिए इस गीत को सुनते हैं आप सबके साथ कार्यक्रम छायालोक।
2: तुम भी गाओ।

0: आता है ना। फिलहाल हमारे साथ कौन है? हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है शुभजीत।
0: शुभजीत जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बेलघोड़िया से।
0: बेलघोड़िया से, बेलघोड़िया से शुभजीत, आप ये बताएं कि क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: मैं एक गाने की फरमाइश करूंगा। एक्चुअली क्या है कि जब भी मैं रेडियो ऑन करता हूँ, मेरा नसीब नहीं है कोई गाना सुनना, लेकिन मैं जानता हूँ ये गाना बजता है रेडियो पे।
0: अच्छा जी।
1: ये है फिर भी दिल हिंदुस्तानी का एक गाना है, बहुत खूबसूरत रोमांटिक ड्रीमी सीक्वेंस गाना है। और
0: ओके।
1: क्या?
0: और किसे तो सुनाएंगे आप शुभजीत? आपने सब कुछ कह दिया, रोमांटिक है, ड्रीमी सीक्वेंस है, जावेद अख्तर
1: प्यार में है।
0: हाँ,
1: नया नया प्यार में है।
0: ओके, उन सभी को, जावेद अख्तर की जितनी भी कॉम्पोजिशन है उनमें से ये गीत मुझे भी बहुत पसंद है, आपको बता दूं। और
1: सादगी से बनाया गया है ना, मतलब जावेद उसका जो सीक्वेंस है इतना अच्छा।
0: हाँ, इस फिल्म, इस गीत के जो बोल हैं वो जितने सिंपल हैं, सादगी से लिखे गए हैं, उतने ही सादगी से इसे संगीतबद्ध किया है जतिन ललित साहब ने।
1: और शाहरुख और जूही का जो पेयरिंग है इतना मस्त है,
0: बहुत अच्छा लगता है आपको।
1: हम लोग शाहरुख के साथ हमेशा काजोल का ही
0: ऐसा माना जाता है, लेकिन जूही की पेयरिंग जो है है शाहरुख के साथ बेमिसाल है। यस बॉस।
1: और उनका जो तालमेल,
0: टाइमिंग, कॉमेडी टाइमिंग जूही चावला की बहुत बेहतरीन है,
1: बहुत बहुत बेहतरीन।
0: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शुभजीत इस गीत के लिए। और शुभजीत की तरफ से हम सभी को ये गीत और क्या ये सुनना चाहते हैं, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज, जावेद अख्तर के बोल को संगीत से सींचा है जतिन ललित ने, और कार्यक्रम है छायालोक 107 FM रेनबो पर। आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, 8:27 आप हैं संजता के साथ।

0: किसी के आने से अगर वातावरण बदल जाए और जज्बात जबा मांगने लगे तो क्या बात है। बस ऐसे ही गीत सुनाते रहिए आप 2213134107 FM रेनबो पर। कार्यक्रम है छाया लोक और आगे हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो
1: नमस्कार आदाब सर, शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कुतुबुद्दीन मुल्ला बात कर रहा हूँ सुंदरबन तिलपी नगर गाँव से।
0: कुतुबुद्दीन जी सुंदरबन से बात कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये बताइए कि क्या सुना रहेंगे आज?
1: इस टाइम में याद आ रहा है बोल राधा बोल फिल्म का टाइटल सॉन्ग
0: बोल राधा। कोई विशेष कारण कि यही गीत क्यों सुनना है आपको?
1: और जब रेडियो पे गाना सुनता हूँ मैं फिट होता जाता, मन में भाला हो जाता, इसलिए ये गाना सुनता।
0: अच्छा, मुझे ये गाना इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे सुरेश वाडकर और साधना सरगम की जो जोड़ी है ना वो मुझे बहुत पसंद है, तो इस हिसाब से मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ।
1: थैंक यू। और एक गाना सुनाना चाहता हूँ, इस टाइम में सुन रहा हूँ श्याम कुमार चंचल जी, उसको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: डेडिकेट करना चाहते? अच्छा, अगर वो सुन रहे हैं तो ये गाना जरूर उन तक पहुँच जाएगा। हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया ये गाना हमें सुनाने के लिए, डेडिकेट करने के लिए। और हमारे साथ कुतुबुद्दीन जी सुंदरबन से, उन्होंने हमें इस गीत की फरमाइश की है, बोल राधा बोल का टाइटल ट्रैक सुरेश वाडकर साधना सरगम की आवाज में। तो चलिए सुनते हैं इस बेहतरीन और खूबसूरत से गीत को, कार्यक्रम छायालोक। 8:33, 44 सेकंड।

0: राधा ने किशन को दिल तो दे दिया, लेकिन अगले गीत में है कौन सी दीवानगी ये जानने के लिए हेलो।
1: गुड इवनिंग दीदी।
0: गुड इवनिंग।
1: मेरे तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी हमारी सब की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।
1: गौरीपुर पालपड़ा हावड़ा से संजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: गौरीपुर के संजीत पाल जी, ये बताइए कि क्या सुनना पसंद करेंगे।
1: दीदी मैं सुनना चाहता हूँ दरार फिल्म से दीवाना दीवाना में।
0: दीवाना, अरे राहत इंदौरी जी, अरे क्या बात है, क्या बात है।
1: दीदी ये मेरा फेवरेट सिंगर ओबीजी का गाना है
0: जी, बहुत अच्छा। आपको पता है ना इसे राहत इंदौरी जी ने दीवाना दीवाना ये जो गीत है उन्होंने लिखा है।
1: हाँ जी जी
0: जी। और किसे सुनाना पसंद करेंगे?
1: सुनाना चाहता हूँ वासुदेव विश्वनाथ गायन और आपको।
0: मुझे भी, थैंक यू सो मच मेरी तरफ से।
1: और मस्त रहे
0: जी, आप भी बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए जैसा कि आपने कहा। तो अगला जो गीत है वो है संजीत पाल, गौरीपुर के संजीत पाल ने इस गीत की फरमाइश की है, राहत इंदौरी जी ने लिखा और अनु मलिक ने इसे संगीतबद्ध किया। 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम है छाया लोक और आपकी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है। हमें इसी तरह से दस्तक देते रहिए 2213-1341। और फिलहाल आपके लिए पेश है ये गीत 8:41।

0: फिल्म दरार से इस रिदमिक गीत को सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीत जी, और आगे बढ़ेंगे किसी और गीत के साथ, लेकिन उसकी फरमाइश आइए। हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग दीदी।
0: गुड इवनिंग, आप बताइए क्या सुनना पसंद करेंगे और कौन बोल रहे हैं?
1: मैं प्रशांत प्रामाणिक बोल रहा हूँ, बाली बरकुल दुनियापारा से।
0: अच्छा जी,
1: मुझे गुलाम फिल्म से आंखों से तूने ये क्या कह दिया इस गीत को सुनना चाहते हैं।
0: अच्छा,
1: और कुछ दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं
0: जी,
1: खास तौर से आपको, कानाई पाल, अजीत कुमार दे, पलाश पोरेल, पलाश मोजिंदा, और इस वक्त जितने भी दोस्त एफएम रेमो सुन रहे हैं
0: सभी को बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत प्रामाणिक जी। और कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है, और आपको बता दूं कि ये समीर ने लिखा है इस गीत को।
1: जी,
0: शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये इस खूबसूरत से गीत को सुनाने के लिए। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज, अभिजीत की आवाज से थोड़ा सा वेरिएशन है ये, इस वक्त समीर ने लिखा और जतिन ललित ने इसे संगीतबद्ध किया। फिल्म का नाम गुलाम। कार्यक्रम है छायालोक 107 FM रेनबो पर, सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को। 8:50 55 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

0: 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम छायालोक और आज हमारे साथ शामिल हुए विमल मित्रा जी, सुमित्रा जी, शुभजीत बेलगोरिया से, कुतुबुद्दीन सुंदरबन से, संजीत पॉल गोरीपार गोरीपुर से, प्रशांत प्रामाणिक बवाली से और मोनिरुद्दीन लश्कर हमारे साथ इस वक्त बात करने वाले हैं। और हमें जो लास्ट गीत है इस कार्यक्रम का वो भी फरमाइश करने वाले हैं, तो बताइए। हेलो,
1: गुड इवनिंग ज्योति जी।
0: गुड इवनिंग, आप बताइए मोनिरुद्दीन जी, कौन सी गीत आप मुझे सुनाएंगे या सबको सुनाएंगे?
1: शादी के महल वाला गाना है।
0: शादी
1: होता है फिल्म से, हाँ। साजन जी का गाए।
0: अच्छा, भाद्र का महीना चल रहा है, खैर कोई बात नहीं, चलिए।
1: लेकिन जब जब लड़का आता है शादी के, तो ये गाना हमारे सभी शादी बाड़ी के यही एक ही गाना होता है, साजन जी घर आए।
0: अच्छा, सलमान के बहुत डाई हार्ट फैन लगते हैं।
1: पार्टी है, वेडिंग पार्टी का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग,
0: वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग आपको लगता है, चलिए कोई बात नहीं। ये वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग एक्चुअली में है, क्योंकि ये जो सलमान ने भी खुद नहीं सोचा था कि एक छोटे से किरदार को वो निभाएंगे और इतनी बड़ी हिट रहेगी, ये है ना,
1: गेस्ट अपीयरेंस,
0: हाँ। गेस्ट अपीयरेंस में, हाँ। थैंक यू सो मच। इसी के साथ संचिता कहती है अलविदा इस कार्यक्रम से, लेकिन अगले दिन फिर आते हैं आपके साथ मुलाकात करने। फिलहाल कुमार शानू, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति की है आवाज, कुछ कुछ होता है फिल्म का नाम, साजन जी घर आए, समीर और जतिन ललित के कॉम्बिनेशन में, यानी कि गीतकार संगीतकार जोड़ी के बहुत सारे गीत आज हमने सुने। तो चलिए आखिरी गीत इन्हीं के कॉम्पोजिशन में, और इसी के साथ इजाजत दीजिए। सुनते रहिए इस गीत को और अगले कार्यक्रम के साथ भी रहिए।